0: तो सामने चढ़े शिरा चेंबी, निंगा मोड़ दे जांग कले है किरे, सुबह चुचे निंसे आउट क्यों?
1: अजी, अम्म जो कुला, चारिये देव मत इंजेक्शन भी?
0: ये दी,
1: ना काफ़ी भी चल,

0: ये राम के चाशु तंगी सांचु ना लो ना तो ने खरी ना
1: खरी खरी नस
0: आ ताई शो शो हेमिंदो 先别把字说。

ठी था पामार लुठी पेज लोग तुन था गिगेन जुओ सोला देन ने यांग था बे सेचे थोप थू केसी किये की किरान लगावे लुदेन मिची बे चोगु सी युब सी ना किये की गावा थे सिम लन्यान ने शेसु किन्नी मिची लम्सू सी ना लार्यां थोगु युब यी ची छे छो